कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, हर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरी मंजिल की, वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास है।

0: तुम मोर नाच कोयल ने बीना बजाई है,
1: आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है,
0: बधाई है,
1: बधाई है,
0: बधाई है।

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: आज राम जन्म की बधाई है बधाई है। आज राम जन्म की बधाई है बधाई है।

तुम आज पिछित हो जाओ ने बाल माँ अब न सताओ रे आओ रे आओ रे आओ आओ रे बाल माँ अब न सताओ